0: তোর দুঃখে কাইলে টাউকে দেখনি, কাইলে পেট দেখনি, কে দুঃখে আও দুঃখে আও। জানি এই বেলা পখালা লাগের হইরান, এই না কাজ জানি হলা কে করনি কে না করনি। তাইলেই বিরামী ভয়ের কেই মেলো মিশে যাই।
1: বুয়া পীর নগরনোস ঝট্টই সুভাষ মেডিকো ফার্মামা গই আলম। এই বিশি সরকো সেরা চোখ দেখি কারাকার জানে বাদো সানি তিন জ্যাম বরু।
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো বুয়া।
1: সুভাষ মেডিকো ফার্মা বেশি শহর নগরপালিকা আটো সেরা।
2: ইহা অনুভবী স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষণ গর্নুকা সাথে উচিত পরামর্শ দিইন্ছ। সবাই খালে ঔষধিমা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা ছ। প্রোপাইটার সুভাষ দনাই, সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 9845664093।
3: অর্জুন यार মিঠো অর্গানিক কফি কাঁ পাইছ নি? বেশী শহরক মনাঙ্গে চৌতারামা রহেক নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড বক্স বিস্ট্রোমা নি ইহা লমজুঙ্গে অর্গানিক কফি র অরু প্রকার কা কফি পাইছ। কফি মাত্রে কি খানা খাজা পনি ছ? সকালি খানা খাজা তে র রমাইলো ফুল হাউস সমেত ছ। সাথী ভাই ভেটঘাট কা লাগি একদমই উপযুক্ত ঠাউ হো।
4: নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড পপ বিস্ট্রোমা লমজুঙ্গে অর্গানিক কফি, বিভিন্ন প্রকার কা কফি, থকালি খানা খাজা তে পাইছ, साथै पुल हाउस पनि सञ्चालनमा रहेको छ।
5: प्रोपाइटर टेकजङ गुरु, नमस्ते थकाली किचन एन्ड बक्स बिस्ट्रो, बेसी शहर नगरपालिका 7 मनाङे चौतारा, सम्पर्क फोन नम्बर 0665220930, मोबाइल नम्बर 9841680025।
6: के तपाईँ भरपर्दो आयुर्वेद सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने चितवनको नमुना आयुर्वेद औषधालय तपाईँहरूकै सेवामा समर्पित छ। यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक औषधिहरू उपलब्ध हुनुका साथै अन्य प्रविधिबाट ठिक नभएका नयाँ तथा पुराना रोगहरू, बाघ, दम, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, क्यान्सर, धातु, किनास, जन्डिस, पाल्स, पत्थरी, फिस्टुला, प्यारालाइसिस, मधुमेह, जाँडरक्सी छुटाउने औषधि, मोटोपन घटाउने बढाउने, ब्लड प्रेसर, यौन रोग, छातीको दाग आदिको सफल उपचार गरिन्छ। दैनिक दक्ष तथा अनुभवी विशेष ज्ञहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841939647 र 9811906010। नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कुल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन।
7: उलाई फर्किने गरे तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टरमा पुरै दाँत हालेछन् बुढाले, देखाउनलाई होला नि? तोलै थर्किने गरी हाँसेका हुन त हाम्रो बाले नि तालबाराहीमै राख्नु भयो के अरे दाँत, अहिलेसम्म भोलियै छन्। लोकल कुखुराको हड्डी त चपाउँछन् बुढाले।
1: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्रालीमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त दन्त सर्जन डाक्टर अरुण कुमार शाहद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू, दाँत सफा गर्ने, टल्काउने र सामान्य शल्यक्रिया, बच्चा तथा वृद्ध वृद्धाको दाँतको विशेष उपचार, भर्ती हुनेहरूका लागि दाँत कलरको सिसा रेजिन कम्पोजिट भर्ने, नदुखाइकन दाँत निकाल्ने दाँतको एक्सरे गर्ने, नमिलेका बाङ्गाटिङ्गा दाँत सिधा गरी मिलाउने, दाँतमा सिसा सिमेन्ट र चाँदी भर्ने, फिक्स दाँत राख्ने साथै दाँत झिक्ने, राख्ने र बनाउने, मुख गनाउने, दाँतको हर्ष, घिचाबाट रगत आउने, सुन्निने, पिप आउने रोगको विशेष उपचार गरिन्छ।
2: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्राली, बेसी शहर नगरपालिका 7 भीमसेन स्थान लमजुङ, प्रोपाइटर ज्ञानु केसी, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841632004 र 9811920981।
8: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज।